नाम ले जा रो तने ने तिखा ने से प्याये चौसिया मी यायो सूरा तुबरी शिवा थे।

नाम ले जा रो तने ने दिखा ने से प्याये चौसिया मी यायो सूरा तुगरे शिवा ठे आलवी तु या प्रमी पिखा तमी अहो ना लाली चौमा जावी जैसे मुमा अस्वां कौने बाबी हेलो वे क्यूबी में मतिया मुबू